0: जो सात विरास त्याए मेरा हर हर सोमपुर से तू गुरु मन पावे
1: जिसनु दयाल होए मेरा स्वामी
0: तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनाए तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनाए
1: जन नानक तू मंगे तिस

पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां।

जी आप दीदी बड़ी अपार बख्शिश के पाई मेहर हुई है। अमृत वेले संगता नु जागण दा बल बख्शा, गुरसिखी वाला जीवन बख्शा है। धन गुरु नानक देव पातशाह जी हो जिन्हां संगतां च हाजरियां भरती होईयां गुरु के सिखा ने माई भाई बच्चा ने गुरु के शब्द नु अपनी कमाई नु सफल करदे हो माया अरदास कराई। गुरु नानक देव जी पातशाह जी हो साध संगत दी माया सफल करनी, गुरसिखी वाला जीवन बख्शना ते अपना मेहर भरिया तरना चे पातशाह दाता जी हो। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी हो जो आप जी ने बख्शिश मेहर कीती है, शक्ति बख्शी है। सिंह साहब जी हो सरदार हरभजन सिंह दे जोगी साहब दी जो ए गुरसिखी दा बूटा लाया है, आप इसे तरह गुरसिखा नु चढ़दी कला च रखना है। दाता जी हो अपना बख्शिश भरिया मेहर भरिया तरना है, पंथ दे अंग संग साहित्य होना है ते इसे तरह सिंह साहब नु आप बल बख्शना, निम्रता गुरसिखी वाला जीवन ते चढ़दियां कला च रखना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहब दा पाठ।

धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन विच इसनो धार लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिनां दी गल है बंदा नाल तकबर फरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नख तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान हां पर एक दिन मंजे ते पैजे निढाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में ए राग सिंधी

कर्मी सहज ना उपजे सहज सहसा न जाए, कर्मी सहज ना उपजे बिन सहज सहसा न जाए, न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाल। सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए, कित संजम तोता जाए मन तो शब्द लागो हस्यों कहे नानक गुरु प्रसाद।

करना है, जो मर्यादा तेनू दसी गई है, जो डिसिप्लिन तेनू दसिया गया है, क्योंकि मर्यादा उत्ते सवाल किया गया सी, मर्यादा गुरु अते शिष्य दे दरमियान दे विच गुरु दसदा है। सतगुरु फरमाया कारी ए करियो, सतगुरु फिर फरमाउंदा है भी आ कार तैं करनी है, आ कार तैं करनी है, आ करनी तैं करनी है। तो ओ करनी दे विच जदों असी गुरु धारण करदे हां, अलग अलग धर्मां दा अलग अलग गुरुआं दा आपो अपना ढंग है अपने शिष्य नूं स्वीकार करन दा। सिख मार्ग दे विच सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महाराज दे घर दे विच, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी महाराज जी दी ही जोत, गुरु नानक देव जी दी जोत, गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज अते इसे तरह दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे स्वरूप दे विच ओ जोत जो है ओ जोत ओही रही, शरीर बदलदे रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे विच उस जामे दे विच गुरु नानक ने अपनी यह मर्यादा कायम कर दिती कि जो साडा शिष्य बनना चाहेगा, सातों गुरुमंत्र लेना चाहेगा, साड़ी सिखी धारण करनी जो चाहेगा, उस दे वास्ते आ शर्तां हैं। अमृत पान कीते तो बिना ओ गुरु का सिख नहीं बन सकता, उसनू अमृत छकना पड़ेगा। और जे कोई आखे के मैं ये नहीं करना चाहता, इस दी की लोड़ है, इसका मतलब ओ ना अपनी होमे ते ना अपना मन गुरु नू देण नू तैयार है, क्योंकि वो पहले दिन तो ही उस सवाल शुरू कर लेंदा है। जिसने सवाल करता गुरु महाराज उसनु स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इसे ही चीज नू तोड़ना है, इस झूठी हस्ती दी मन मर्जी नू, इस झूठी हस्ती दे ज्ञान नू ही उन्होंने तोड़ना है। उन्होंने फुल अथॉरिटी है कि साड़ी साड़े तन नाल जो मर्जी कर दें, जिस तरह का मर्जी बना दें, अते साड़े मन दे टोटली अगेंस्ट चले जान, साड़ी जो बिलीफ सिस्टम है, ज्ञान है, जो असी ठीक समझते हाँ, उस दे टोटली ऑपोजिट जा सकते हैं, उस दी उत्थे कोई बुकत ही नहीं रह जाती। जे कोई सिख आखे महाराज इस चीज की की लोड़ है, इहदा मतलब कि वह अपना ज्ञान उत्थे फिर दिखा रहा है, पर उसके ज्ञान की तो उत्थे कोई बुकत ही नहीं, उत्थे तो पहले ही तख्ती लगी है, जीवत मरे मरे फुन जीवे ता मुखंतर पाए, नानक सतगुर तद ही पाए जब विचों आप गवाए, अपना आप गवा दे। अते किसे भी धर्म दे विच जदों शिष्य गुरु धारण करता है, उसका एक ही ढंग है कि शिष्य अपने आप नूं सरेंडर कर दिंदा है। की डिसिप्लिन है वह गुरु की अपनी मर्जी है, वह गुरु जानता है। उस नूं कई लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिकली इस चीज का आ फायदा है, इस चीज का आ फायदा है, इस चीज का आ फायदा है। पर जो सिख है वो सिर्फ एक ही गल देखता है कि एक गुरु का वचन है, बस उसनु ओ उस चाहे फायदा है या नहीं है, वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है, वो रैशनल है जा इरैशनल है, पर वो गुरु दा वचन है। बस सिख दे वास्ते इतना ही है कि वो गुरु दे वचन नू उस दी अथॉरिटी नू चैलेंज नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता। तो साडे धर्म दे विच गुरु वाले असी उस दिन बनते हाँ, गुरमंत्र सानू उस दिन मिलता है जिस दिन असी ओ जो सेरेमनी है पंज प्यारियां तो अमृत छक के ते पंज प्यारियां तो गुरु मंत्र दी दात वाहिगुरु शब्द जो है वह फॉर्मली उन्हां तो सुनते हैं कि अज तो तुहाडा मंत्र जो है वह वाहिगुरु शब्द है। वो सुनन तो बाद साडी आत्मा दे उत्ते मोहर लग गई, सानू अधिकार मिल गया उस शब्द दे जाप करन दा। फिर उस सिख ने अपनी जिंदगी दे विच जो डिसिप्लिन उसनू दस्या गया है, उस डिसिप्लिन नू उसने कमाना है, उस डिस

पायो तिन तिन अपनो राह चलायो तिन तिन अपनो राह चलायो। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज बचित्र नाटक दे अंदर अपनी पावन गुरबाणी ते अकाल पुरख दे सामने होया होया प्रोमिस गरीब नूं आज सचे पातशाह जी दे सामने कीता होया वचन भई मेरे अकाल पुरख नाल मेरी केड़ी केड़ी गल बात होई तां मैं संसार दे अंदर अवतार तारिया। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह अपने पहले जन्म दी हिस्ट्री दस रहे ने बचित्र नाटक दे अंदर ते आरंभ करदे हन भी जदों संसार दी उत्पत्ति होई किन्ने राजे महाराजे आए किन्ना वंश विचों जन्म लैंदिया होया साडी ए सोडी वंश उत्पन्न होई। गरीब नवाज सचे पातशाह

तीर्थ गवन करे। खटकर्मा ते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए।

किस मन को प्रेरणा देके गुरु नाल जुड़ इस तरह हुण जुड़े हो शामा नु आओ प्यारी सास संगत एहो जे समय रोज रोज नहीं मिलता ये खास बख्शिश होंदी है सत्संग दा प्रवाह चलता कीर्तन दा प्रोग्राम गुरमुखां दा मेल तो आओ इस तू पूरो लाभ प्राप्त करके अपना जीवन सफला करिए धारना एक बार प्यार नाल सारे पढ़िए क्योंकि अमृत वेले तू नाम दा वणज करन वास्ते आए हो तो जिस वखर को लैण तू आया आप जी वणजिया है तो पहला दास बोले पिछे सारी संगत